0: is Leica Radio across the Midlands.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Your favorite show on Leica Radio Midlands. You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. The Bollywood King, Bali Brambat, with the best of Bollywood classics every weekday at 1 p.m. Leica.

सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती सनबंध।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोहन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

आहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवर।

कर कर वेखै सृजनहार। नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बो लख होवै लख होवै लखवीस, लख लख गेड़ा आखियै एक नाम जगदीश।

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन।

0: to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4-5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ordinary.
2: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
0: Laika Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire. With the UK's biggest Asian hits. 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Laika Radio Network. Offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at laikamedia.co.uk.
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: सबसे निराला
1: मैम्स्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
3: Punjab the biggest tunes.

0: Worcester Road. The B4187 is now closed southbound as doing gas main works there from Church Street towards the A456 Kidderminster Road.
1: This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Amantrika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
3: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं. एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स. दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स.

0: Shah Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल Protected.
3: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी।
4: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
3: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया,
4: दिल तो टूट पे किया
3: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
5: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
3: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394।
6: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
7: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
8: Yeah, like a goal.

0: Mobiliser, Hoshiar!
1: Leica Radio.
2: Let's return to the biggest hits back-to-back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Are you listening? Leica Radio is now available across Derbyshire on DAB.
3: स्वागत है श्रोताओं का मनोरंजन की दुनिया में. माय नेम इज रवि शर्मा. दोपहर बाद एक बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं और भाई कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं. मनोरंजन बात क्या है कि जान हथेली पर रखते हैं, क्या क्या कस्में खाते हैं, प्यार का रोग लगाने वाले जीते जी मर जाते हैं. मजनू के हिस्से के पत्थर लैला हंस हंस खाती है और लैला लैला करने वाले थल में जान गंवाते हैं, रेगिस्तान में जाते हैं. जिनको जिद हो प्यार बुझे ना, शीरी की अरमानों से दूध की नहर पहाड़ों में फरहाद से वो खुदवाते हैं. क्या कहने साहब, जहर भी हीरे पी लेती हैं और कैदों के बहलाने पर रांझा बनने वाले तख्त हजारे को ठुकराते हैं. क्या कुछ करते हैं साहब ये प्यार करने वाले. आइए आज प्यार करने वालों का चर्चा करते हुए कार्यक्रम शुरू करते हैं. आप भी तो उनमें शामिल हैं, हम भी प्यार करने वाले हैं.

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: लीजिए साहब, SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK का वो रेट पाउंड का बताने से पहले बता दें कि हमने भाई शुरुआत की दो गीतों से बैक टू बैक संगीत के तहत. पहला गीत हम प्यार करने वाले वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म दिल. किसी जमाने में इस फिल्म के गीतों ने बड़ी धूम मचाई थी. और साहब दूसरा गीत था ये जो चिलमन है, महबूब की मेहंदी थी फिल्म, रफी साहब की थी आवाज और भाई राजेश खन्ना थे फिल्म में या कौन था, मैं पुरानी फिल्मों के बारे में सॉलिड जानकारी नहीं रखते हैं शर्मा जी, लेकिन वो था आई थिंक राजेश खन्ना ही रहे होंगे हीरो. पर गीत बहुत खूबसूरत थे इस फिल्म के, बहुत मीठे थे इस फिल्म के. तो साहब शुरुआत हो चुकी है और अब पाउंड का रेट नोट कीजिए. एक पाउंड के बदले SBI UK वाले दे रहे हैं हाउ मच, 127 रुपए 45 पैसे. Yes, 127 pounds or rupees and 45 paisas. And you can transfer via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: Like our radio.
3: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Laika Radio.
5: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.

0: प्यार करने वालों का रंग रूप बदल जाता है भाई, चेहरे पर कोई खास तरह की रौनक आ जाती है, आंखों में चमक बढ़ जाती है, होठों पर मुस्कान तैरने लगती है। भाई ये गीत सुना आपने, एंजॉय किया, कौन सुनवा रहे थे?
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
0: Like a radio network. अब आप रवि शर्मा से आज के एक खास खास समाचार सुनिए। फ्रांस के शहर बोर्दो के पास जंगल में लगी भीषण आग को देखते हुए वहां आसपास के इलाकों से हजारों लोगों को सिक्योर ठिकानों पर पहुंचाया गया है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस के होम मिनिस्टर लॉरेंट नुनेज ने कहा है कि इलाके में हालात अब भी बेहद मुश्किल बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि आग अनिश्चित दिशा में बढ़ते हुए बोर्दो की ओर बढ़ रही है, हालांकि अधिकारियों ने फिलहाल शहर को खाली कराने की संभावना को कम बताया है। भारत से आने वाली खबरों में, भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने के बाद कहा है कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने से ज्यादा खुशी की कोई और बात नहीं हो सकती। पीटीआई के मुताबिक मीराबाई चानू ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, कॉमनवेल्थ खेलों में ये मेरा तीसरा गोल्ड मेडल है, कुल मिलाकर चौथा मेडल। मेरी यात्रा 2014 के कॉमनवेल्थ खेलों से शुरू हुई थी जहां मैंने सिल्वर मेडल जीता था। CPIML लिबरेशन की स्टूडेंट संगठन आइसा की नेता नेहा बोरा ने बिहार में पेपर लीक मामले को लेकर मुजाहिरा कर रहे, प्रदर्शन कर रहे लोगों को गिरफ्तार किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आइसा के एक्स हैंडल पर एक वीडियो जारी करके कहा है कि वो बिहार पहुंचकर इस मामले को पूरे जोर शोर के साथ उठाएंगी। केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 में बदलाव का बिल आज लोकसभा में पेश करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये बिल पेश करेंगे। आप जानते हैं पेपर लीक को लेकर के भारत में स्टूडेंट्स के द्वारा एक बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट किया गया, वो अब समाप्त हो चुका है, सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं, लेकिन इस आंदोलन में 22 स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवाई थी। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग मुकाबले में भारत के बॉक्सर जादूमणि सिंह ने पाकिस्तानी बॉक्सर सुमामा रहमानी के खिलाफ अपनी जीत कारगिल के फौजियों को समर्पित की है। जीत के बाद जादूमणि ने कहा कि आज कारगिल डे है और मैं अपनी जीत कारगिल हीरों को समर्पित कर रहा हूं। जज ने मेरे पक्ष में 5-0 से फैसला दिया है, मैं दिखा रहा था कि भारत सबसे आगे है। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ खेलों में उन्होंने एक हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान के सुमामा रहमान को 5-0 से हराया है। सोनम वांगचुक को आज छुट्टी मिलने वाली है, वो अस्पताल में है, अस्पताल में अब उन्हें स्वास्थ्य सर्टिफिकेट दे करके आज छुट्टी दी जाएगी। लद्दाख रवाना होने से पहले उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अब वो दिन आ गया है जब मैं इस अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा हूँ, काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मैं ठीक से खा रहा हूँ और अब मेरे बदन में जान भी आ रही है। मैं लद्दाख जाने से पहले राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पण करूंगा। आप लोगों को याद होगा कि ऐसे ही मैं जब स्विट्जरलैंड से मैं आया था तो राजघाट पर श्रद्धांजलि देने के बाद ही अनशन शुरू करने जंतर मंतर गया था। आपको बता दें कि राजघाट उस समाधि का नाम है जहां महात्मा गांधी जी की समाधि है। काकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के वॉलंटियर मोहम्मद जुनैद को लेकर के एक बयान दिया है कि उन्हें सभी जरूरी कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सीजेपी ने अपील किया कि उनके बारे में फैलाई जा रही गलत सूचनाओं और नफरत भरे प्रचार को रोका जाए। न्यूयॉर्क जाने पर गिरफ्तारी से जुड़े सवालों पर बेन्यामिन नेतान्याहू का स्पष्टीकरण आया है। ये खबर के भाई बेन्यामिन नेतान्याहू को न्यूयॉर्क जाने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इस बारे में काफी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतान्याहू ने कहा है कि वो सितंबर में यूएन जनरल असेंबली में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क जरूर जाएंगे। नेतान्याहू का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने अपने एक बयान में उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही थी। हालांकि पिछले सप्ताह ममदानी अपने उस बयान से पीछे हट गए थे। उन्होंने माना था कि इंटरनेशनल क्राइम न्यायालय यानी कोर्ट आईसीसी की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर नेतान्याहू को गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार उनके पास नहीं है। रविवार को फॉक्स न्यूज से बातचीत में नेतान्याहू ने कहा कि वो ममदानी के पहले दिए गए बयान को लेकर चिंतित नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ममदानी नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: दिस इज द लाइकर रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
4: The one and only one, Ravi Sharma, on your number one radio.

0: कितना प्यार करे, इतना प्यार करे, कोई क्वांटिटी बता सकता है? प्यार को तोला जा सकता है, मापा जा सकता है?
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: Leica Radio. Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel.
0: साउथ हॉल ट्रेवल याद दिला रहे हैं भाई कि FCDO द्वारा जो यात्रा पर के बारे में वार्निंग दी गई थी, कहते हैं वो वापस ले ली गई है। FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कंपेटिटिव दुबई डील्स। उनका फोन नंबर है 02085748410 एंड दे आर एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Radio.

0: और मेरे हम सफर आप हैं बहन भाइयों, आपसे भी यही दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, कहीं चल ना देना छोड़कर। बरसों का साथ है, लंबी मुलाकात है, ये मेंटेन रखेंगे आप और हम। लता मंगेशकर और मुकेश जी के स्वर में आपने सुना गीत फिल्म मेरे हम सफर।
1: ये है लाइका रेडियो। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और नोट कीजिए उनके रेट्स मैं बता देता हूँ। एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 127.81 रुपीस। पाकिस्तानी रुपए दे रहे हैं 369.94, श्रीलंकन 447.74, बांग्लादेशी टका, बांग्लादेश के टक्के जो है एक पाउंड के बदले 164.3 एंड अफगान अफगानी 88.65.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. LIKA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: सोने का भाव नोट कीजिए साहब। सर्राफा बाजार में द गोल्ड इज ट्रेडिंग एट द रेट ऑफ 98.84 पाउंड्स पर
1: ग्राम। ज्वेलर्स स्पेशलाइजिंग इन डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, 22 कैरेट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन्स एंड गोल्ड बुलियन बार्स। विजिट राम ज्वेलर्स ऑन 116 बेलग्रेव रोड, लेस्टर, और कॉल 0116-266-4278। Leica Radio.
3: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 749. Leela Medium Atta 10 kg, just 399. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 149. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 399. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kg. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU, and 2A Rollout Hill, Leicester, LE5 4UN.
4: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116-266-6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
5: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Bedyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy.
6: Siddhayu, now available at Deepak Foods Thornton Heath.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
6: लंदन, आर यू रेडी? रागा presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Miyan Chote Miyan this December.
8: Dil ne ye kaha hai dil se, bol chudiyan.
6: One date, one show.

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। माय नेम इज रवि शर्मा और इस वक्त मैं आपको चिंतन सुनाता हूँ। मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद लेकर आता हूँ कोई एक विचार जो जुड़ा हो किसी प्रसंग से, किसी ऐतिहासिक घटना से, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से। ऐसा विचार जो हमारे लिए प्रेरक बने, प्रेरणा देने वाला, इंस्पायर करने वाला। आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं प्रयागराज भारत से श्री प्रहलाद नारायण व्यास जी का भेजा आलेख। याद दिला रहे हैं रवि जी, आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत के महान वैज्ञानिक, दूरदर्शी विचारक और 11वें प्रेसिडेंट, जिन्हें भारत के लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है। हमारी ओर से श्रद्धांजलि दीजिएगा उनको। आपको बता दें भाई, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन थे? जनता के राष्ट्रपति ये भी कहा जाता है उन्हें। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक 5 बरस के लिए वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा करते रहे। जानते हैं उनका नाम? अबुल पकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम की आज पुण्यतिथि है। 27 जुलाई 2015 को उनका निधन हुआ। और निधन हुई कैसे? आज पुण्यतिथि है उनकी, याद करते हैं उनको, उनकी कुछ एक बातों को। क्योंकि 27 जुलाई 2015 को वे IIM शिलोंग में स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे। एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को वो जब एड्रेस कर रहे थे, वहीं कोलैप्स हो गए और निकल लिए। ऐसे व्यक्ति बड़ी, क्या कहते हैं भाई, शांतिपूर्ण मृत्यु को अपने आप के वर्णन करते हैं। इसरो में भारत के पहले स्वदेशी SLV-3 प्रक्षेपण यान के डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा अहम रोल था। DRDO में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की उन्होंने रहनुमाई की, नेतृत्व किया। भारत के डिफेंस और स्पेस प्रोग्राम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बहुत बहुत योगदान था। 1981 में पद्म भूषण मिला, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में तो भारत ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, भारत रत्न, द हाईएस्ट अवार्ड। भारत का यह सबसे ऊंचा सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न। अब साहब, उनकी बहुत सारी खूबियां कई बार जिक्र कर चुके हैं हम। आज उनकी पुण्यतिथि पर प्रहलाद नारायण व्यास जी ने जो आलेख भेजा, उसमें याद दिलाया है उनकी जीवन की एक घटना को। ये तो आप जानते हैं कि वो कहते थे, सपने वो नहीं होते जो आप सोकर देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। किसी उद्देश्य को, मकसद को, मंजिल को पाने के लिए जब आप जी जान लगा देते हैं, वही हैं आपके सपने। खैर साहब, हम उनके जीवन की एक छोटी सी घटना आज प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं जो व्यास जी ने भेजी है। आप जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म जो है वो हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में। और कहां हुआ था? साउथ में, दूर रामेश्वरम में। अब रामेश्वरम वो जगह है भाई जहां से श्रीलंका बहुत नजदीक है, और वो रामेश्वरम का जो पुल सुना होगा आपने, जो नासा के वैज्ञानिकों ने दिखा भी दिया है, अब समंदर में दिखाई पड़ता है, श्री राम के समय का सांस्कृतिक नगरी है, वहां डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। शिक्षा दीक्षा वहीं, बचपन में बड़ा संघर्ष करना पड़ा पढ़ाई जारी रखने के लिए। लेकिन उनके जीवन की एक घटना भाई, छोटी उम्र में ही काम तो करना पड़ा उन्हें, फिर
एक नौकरी की तलाश में उन्होंने संघर्ष किया। अब नौकरी निकली थी उत्तर भारत में, दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक यात्रा करने के लिए पैसे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाए और उसके बाद वे इंटरव्यू के लिए नॉर्थ में आए। गंगा किनारे बसे एक शहर में उनका इंटरव्यू हुआ और उन्हें बता दिया गया कि वो फेल हो गए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत निराश हुए, डिसअपॉइंटेड। हर किसी की जिंदगी में ऐसे कुछ क्षण आते हैं। उन्होंने सोचा मेरे पास तो वापस जाने के लिए किराया भी नहीं है, मैं तो सोच गया था कि ये जॉब मिल जाएगी, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो जाने के बाद बहुत मायूस, बहुत निराश, बहुत टूटे हुए इस नौजवान ने, उम्र छोटी थी पर जॉब करने योग्य थी, इन्होंने फैसला किया कि ये गंगा में डूबकर मर जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। जाएंगे भी कैसे, ना किराया है ना मंजिल पाने की जो धुन सवार थी वो भी नहीं मिली, तो वापस जाके क्या मुंह दिखाएंगे। अब इतनी निराशा में वो प्लानिंग कर ही रहे थे, पुल पर पहुंच गए कि यहां से छलांग लगा दूंगा गंगा में। तभी एक महात्मा आ गए, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम का चेहरा पढ़ा और बोले, क्यों नौजवान बहुत निराश लगते हो? जनाब अब्दुल कलाम जी ने बता दिया कि मैं जीना नहीं चाहता, आया था विश्वास था कि नौकरी मिलेगी, बहुत तैयारी की थी पर इंटरव्यू में फेल हो गया, अब मैं जीना नहीं चाहता। महात्मा ने कहा, अरे भाई समझे नहीं, आपको जानबूझकर उस परमपिता परमात्मा ने फेल करवाया है। अब भाई वो तीर्थ स्थान था गंगा का किनारे और वहां पर एक महात्मा का मिलना, एपीजे अब्दुल कलाम की उत्सुकता बढ़ी, भगवान मुझे क्यों फेल कराएंगे, मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। अरे तुम्हें फेल भगवान ने इसलिए करवाया है कि तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा काम उन्होंने सोच के रखा है, इस छोटी सी नौकरी में तुम अपनी जिंदगी खपा दोगे, उन सपनों का क्या होगा, उन योजनाओं का क्या होगा जो तुम्हारे मन में टाइम टू टाइम हिलोरे मारती हैं, जो तुम्हें रात भर जगाती हैं, सपने दिखाती हैं, वो प्लानिंग्स, वो योजनाएं। अब्दुल कलाम का इंटरेस्ट बना और कहा, तो महात्मा जी आप ही बताइए क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या मुंह दिखाऊंगा वापस जाके। महात्मा ने कहा, तुम्हें जाने के लिए किराया मैं दूंगा, किराया नहीं है ना तुम्हारे पास, पर वापस जाओ। और उसी शक्ति से, उसी उत्साह से पढ़ाई में मन लगाओ, देखना ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ सोच के रखा है। आज इस इंटरव्यू में, इस परीक्षा में तुम फेल हुए हो क्योंकि भगवान ने इससे बड़ा काम, इससे बड़ा दायित्व तुम्हारे लिए प्लान करके रखा है। और बहनों भाइयों, महात्मा जी ने समझाया कि तुमने अपना कर्म किया, फल नहीं मिला क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल देना उसका काम है, बस अपना कर्तव्य निभाते रहो, फल की चिंता मत करना, फल वो देगा ऊपर वाला। भाई गीता की इन बातों का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर ऐसा असर पड़ा कि जिंदगी भर उन्होंने गीता अपने साथ रखी। वो वेजिटेरियन थे, सात्विक जीवन, सादा जीवन, वापस लौटे और विज्ञान की दुनिया में तहलका मचाने वाले, एक बहुत बड़ा काम करके मिसाइल मैन कहलाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। July 25, 2002 में उन्हें प्रेसिडेंशियल पैलेस यानी राष्ट्रपति भवन में एंट्री मिली, वहां भी वो बड़ी सादगी से रहे, लेकिन कुछ बड़े बड़े काम ऊपर वाले ने हमारे लिए सोच के रखे होते हैं, कहीं एक असफलता मिलने पर, कहीं एक बार कहीं फेल हो जाने पर आप ये मत समझिए कि आप उसके काबिल नहीं है, हो सकता है आप उसे किसी बड़े काम के लिए तैयार हैं, ईश्वर ने तुम्हें कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए तुम्हें यहां फेल
करवाया है। उसकी इच्छा के बिना तो कुछ होता नहीं। वो चाहता था कि आप भारत के राष्ट्रपति बने, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रेसिडेंट। उसके बाद बहनों भाइयों, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इस घटना का जिक्र किया, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। जिंदगी में जब कभी असफलता यानी नाकामी मिले, सोच लेना इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी आपका इंतजार कर रही है।

आज का चिंतन, आज का विचार। छोटी छोटी असफलताएं आपको विचलित ना करें, बस ये विश्वास करके चलना कि ऊपर वाले ने कोई बहुत बड़ा पद, कोई बहुत बड़ी प्रतिष्ठा, कोई बहुत बड़ा काम आपके लिए सोच के रखा है, मिलेगा, जिससे तुम्हारा नाम भी होगा, काम भी होगा और बहुत ऊंचा मुकाम भी होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आज उनकी पुण्यतिथि पर उनके जीवन की यह घटना हम सबके लिए प्रेरणा बने, संदेश बने। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड व्हेन यू फेल एट वन स्टेज, बिकॉज ए वेरी बिग सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू।

ख्वाब न तुम दिखलाओ। सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। स्ट्रगल करने के लिए, मेहनत करने के लिए आपको मजबूर करते हैं, वो है सपने।

0: आज का चिंतन, आज का विचार। जब कभी जिंदगी में पूरी मेहनत करने के बावजूद सफलता ना मिले तो सोच लेना, उससे बड़ी कोई जिम्मेदारी आपका इंतजार कर रही है। उससे बड़ा कोई पद, प्रतिष्ठा या कोई पोस्ट इज वेटिंग फॉर यू। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित, बहुत रिस्पेक्टेड और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की आज पुण्यतिथि है। 27 जुलाई 2015 में शिलोंग में एक स्टूडेंट्स कार्यक्रम में लेक्चर करते हुए उनका निधन हुआ था। वो नौजवानों को बहुत प्रेरित करते थे। समय समय पर उनके लेक्चर यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में ऑर्गेनाइज किए जाते थे। और देखिए, अपनी जिंदगी का आखिरी दिन भी उन्होंने काम करते हुए, स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए, अपने व्याख्यान के साथ ही उनका जीवन समाप्त हुआ। और एक और हैरानी की बात बताएं, भारत के राष्ट्रपति रहने के बावजूद उनकी, आप जानते हैं उन्होंने शादी तो की नहीं थी, परिवार नहीं था उनका, लेकिन उनके सामान में, उनकी प्रॉपर्टीज में क्या कुछ मिला? 2 जोड़ी कपड़े और कुछ किताबें। कैसे कैसे व्यक्तित्व, कैसे कैसे महापुरुष पैदा किए हैं उस धरती ने। आज उनकी पुण्यतिथि पर डॉक्टर प्रहलाद नारायण व्यास जी प्रयागराज से, भारत में प्रयागराज बता दें भाई, पुराना इलाहाबाद, अब उसका वो सबसे पुराना नाम टाइटल खोज के अब उस शहर को प्रयागराज कहा जाता है। वहां से प्रहलाद नारायण व्यास जी ने ये चिंतन आज का भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। जो गीत हमने आपको सुनवाया, दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म जीना नहीं बिन तेरे, मनहर उदास और साधना सरगम की आवाजें थी। लीजिए अब चिंतन को समेटते हैं, आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कम्पेटेटिव रेट में बता दू, एक पाउंड के बदले टुडे दे आर गिविंग 127.45 रुपीज, 127.45 का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai Laika Radio.
4: Laika Radio.
5: List up, stock up and save at Falcon Cash and Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 749. Leela Medium Atta 10 kg, just 399. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 149. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 399. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry, 82A Syston Street West, Lister, LE12JU and 2A Rollout Sale, Lister, LE54UN.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungala and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist.
9: Be sure to catch the show across the Midlands. The Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July. And at the Crescent Theatre Birmingham. Stadium, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
8: Click RiffcoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
9: Leicester Miller is back.
10: And the stage is about to explode. Confirm.

0: ਗੱਪੇ ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Monster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स सबके लिए कुछ न कुछ है 62-64 बेलग्रेव रोड LE4-5AS पर चाहे डाइन इन करो टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरू से मंगवाओ कॉल कीजिए 0116-332-5100 एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ordinary

बैक टू बैक संगीत में वे पहला गीत शोभा गोटू और सखियों की आवाजों में जा रहा है भारत। यस, भारत में भाई इंतजार कर रहे हैं। वहाँ ऋषि और रूपाली की शादी हुई है और कहते हैं आपके रेडियो से सुनना चाहते हैं शादी का गीत। तो भाई ये दामिनी जी की फरमाइश पर ये गीत हम शामिल कर रहे हैं। इट्स गोइंग टू ऋषि एंड रूपाली। विशेज फॉर द हैप्पी मैरिड लाइफ फॉर बोथ ऑफ यू।

0: कब तलक क्षमा जली, लेकिन कब तलक ये धुन चली भाई, ये संगीत मीठा संगीत। आवाजें तो लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आपने पहचान ली होंगी, लेकिन इस गीत में ये तर्ज उत्तम सिंह। उस जमाने में शायद उत्तम सिंह जगदीश खन्ना की जोड़ी होती थी, लेकिन सरदार जी संगीतकार उत्तम सिंह बड़े गुणी, बड़े टैलेंटेड भाई। गीत सुपरहिट थे इस फिल्म के, पिंटर बाबू, दैट वाज द नेम ऑफ द फिल्म। बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत हमने सुनवाए भाई। पहला गीत शादी का गीत था, जिसके लिए फरमाइश हमें दामिनी जी ने भेजी थी, और दामिनी कहती है भारत में हमारे रिश्तेदार जो हैं वो शादी के बंधन में बंधे हैं, तो आप उन्हें बधाई दे करके शादी का गीत लगा दीजिए। भाई हमने लगा दिया, थैंक यू वेरी मच, और बहुत बहुत बधाई वंस अगेन टू ऋषि एंड रूपाली, एंड एंजॉय योर भाई वेडिंग, और वैवाहिक जोड़ी जो है ये सुखी रहे, खुश रहे, ये दुआएं हमारी ओर से। लीजिए साहब, 11:41 हो गए हैं, याद दिला दूं कि हमारी आपकी मुलाकात दोपहर बाद 1 बजे तक जारी रहेगी। आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्मदिन है या शादी की सालगिरह या कोई और उत्सव, तो हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। वैसे आज जन्मदिन मनाने वालों में कुछ फिल्मी हस्तियां शामिल हैं, जैसे कि कीर्ति सेनन भाई, नई अभिनेत्री है, मतलब उतनी नई भी नहीं लेकिन इतनी पुरानी भी नहीं है कि उसके गीत हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकें। 27 जुलाई को 1990 में नई दिल्ली में पैदा हुई थी कीर्ति। ओ लंबी और भाई ऐसी व्यक्तित्व की स्वामिनी है। आज ही के दिन उद्धव ठाकरे का भी जन्म हुआ था मुंबई में भाई। ये उद्धव ठाकरे पॉलिटिशियन हैं और बाल ठाकरे के सुपुत्र, तो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स। राहुल बोस ये भी एक अभिनेता थे भाई, कुछ एक फिल्मों में दिखाई दिए हीरो, अच्छी फिल्में थी लेकिन आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। 1967 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। और कोई है भाई आज अपना जन्मदिन मनाने वाले? हैं तो बहुत सारे लोग, लेकिन जिनके नाम हमारे पास पहुंचे हैं भाई उन्हें हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एक और नाम है कलाकारों में, विश्वमोहन भट्ट। ये भाई नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन जो भी कला से जुड़े हैं भारत में वो इस नाम से परिचित हैं। जयपुर में जन्मे थे 1950 में विश्वमोहन भट्ट। इसके अलावा भाई जन्मदिन मनाने वालों में भारती मुखर्जी हैं, वो भी कोलकाता में जन्मी थी 1940 में। और साहब बल मेरा जन्मदिन नहीं हुआ था इस दिन, जुलाई में पैदा हुआ था लेकिन ये दिन नहीं था। थैंक यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स भाई जो लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं।
1: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
0: और एक और सूचना हमारे सामने उभर कर आई है, स्क्रीन पर छाई है। क्या है सूचना देखता हूं भाई, अगर मिल जाएगी तो। दिवाली, अरे यस, कैसे भूल सकता हूं मैं भाई। कल हमने इस दिवाली के त्योहार को जीवंत देखा। यहां यूके में दिवाली स्टोरी नाम से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है तैयार हो रहा है, कल उसके कुछ अंश हमने देखे। स्वामी नारायण मंदिर, BAPS स्वामी नारायण मंदिर नीजडन से एक बड़ी कोच, वो पूरी की पूरी भाई रामलीला उस पर पेंट हुई थी, राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी हनुमान जी सबका दर्शन करवाते हुए गाते बजाते हुए लंदन में इस कोच ने भाई प्रचार प्रसार किया उस इवेंट का जो होने जा रहा है 27 सितंबर को, आई बिलीव ऑन संडे। मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी खुल नहीं रही है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा इवेंट है जिसकी कल प्रमोशन तो हुई लंदन आई पर भाई, आर्टिस्टों ने अपने कॉस्ट्यूम में वहां नृत्य किया और राम जी और सीता जी दोनों कोच में खुली बस में हमारे साथ यात्रा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि भाई हम भगवान राम के साथ साथ जो है उस यात्रा में सरयू नदी पार करके और वनवास की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा माहौल और लोग देख रहे थे गाने बजाने की, हमारी वो भजन कीर्तन वाली आवाज भी दूर दूर तक पहुंच रही थी स्पीकर के माध्यम से, और वो कोच गुजरी लंदन की सड़कों से पहुंची लंदन आई पर। नितिन जी बहुत बहुत बधाई आपको इस शानदार आयोजन के लिए, जिसकी अभी भूमिका ही देखी हमने लेकिन पूरा देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
1: is Leica Radio. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: ये अंदाज तो भाई ओपी नैयर का है। कुछ हटके, कुछ डटके, ओपी नैयर भाई वो उनके साज अपने होते थे, कुछ इस तरह के साज गीत में शामिल करवाते थे कि वो फोक भी होता था, पॉप भी होता था और छा जाता था भाई वो संगीत दिलों पर। आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजें, पहचान लिया होगा आपने गीत कौन सा है।

0: पल दो पल का साथ हमारा, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे ये कव्वाली। That was taken from the film The Burning Train। भाई ऐसी ऐसी फिल्में भी बनी हैं जिनमें आप एडवेंचर्स देख सकते हैं। बर्निंग ट्रेन में यात्रा कर रहे कुछ मुसाफिरों का वो व्यवहार ही फिल्म की कहानी बनाता है। पल दो पल की यारानी, हम सब मुसाफिर हैं और पल दो पल के लिए मिले हैं सफर में, और सफर का जो क्या कहें आनंद है वो ले रहे हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK reminding that if you want to send money to India, this is the time. There is a good rate. Why at the moment for £1 they are giving 127.45 rupees. You can transfer via branch, online or by using the योनो SBI मोबाइल ऐप जो है आप भेज सकते हैं पैसे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: ये है
3: लाइका रेडियो।
4: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, Dumontford Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, dumontfordhall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: കറ്റാസേരി ജോസഫ് യസുദാസ്, കെ ജെ യസുദാസ്. ദേഖിയേ സാബ്, സുരീലി ആവാസ്. और अब तो 86 साल की उम्र हो गई है उनकी, और भाई संगीत के विषय में बहुत गहन अध्ययन है इनका, तपस्या है इनकी. इनका एक कोई वो इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं म्यूजिक का, आगे नई पीढ़ी को पास ऑन करने के लिए. पर यसुदास इस सप्ताह के कलाकार होंगे और इनकी आवाज़ में बहुत सारे गीत आप सुन पाएंगे. कई भाषाओं में इन्होंने गाए हैं, हम तो हिंदी फिल्मों के ही सुनवा रहे हैं आपको, लेकिन इन्होंने जो गीत गाए हैं वो मलयालम, कन्नड़, उड़िया, उड़ीसा की जो भाषा है, बंगाली, मराठी, अरबिक, तेलुगु, लैटिन, भाई इतनी भाषाओं में इन्होंने गाए हैं गीत, और गीतों की संख्या बल 50,000 से भी ज्यादा गीत गा चुके हैं यसुदास. तो आर्टिस्ट ऑफ द वीक यसुदास की आवाज सुनिए, एंजॉय कीजिएगा. इस पूरे सप्ताह गूंजेगी उनकी आवाज लाइक अ गोल्ड रेडियो.
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग. डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स. विजिट derivalley.net.
3: Ravi Sharma on your number one radio.

महेंद्र बजारिया साहब कहते हैं कि खुश कर दिया रवि जी, ये गीत आपकी पसंद का इसलिए आपके नाम किया जी। वैसे बहुत लोगों को पसंद है, बांट लो आपस में। देखो झगड़ा मत करना भाई, जिसको जो अच्छा लगे ले लिया करो, हम तो लुटा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ना देर आर अदर मैसेजेस स्क्रीन पर, बहुत सारे मैसेज हैं जिनमें लिखा है थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा दिन बना दिया ये गीत सुनवाकर। अब वो कौन सा गीत था जो आपका दिन बना गया वो नहीं पता चलता, क्योंकि आपने मैसेज भेजा था करीब आधा घंटा पहले कौन सा गीत बजाया था मैंने, मैं ढूंढता रहूंगा कहीं ऐसा ना हो वो गीत किसी और ने पसंद कर लिया हो।

0: मुकेश लता मंगेशकर हरियाणा।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: थैंक यू वेरी मच मानसी रंजन वत्सला जी विजय मॉरिशस वाले हंसा बोरा शोभना राय भाई आप सबने जो गीत पसंद किए वो आप ही के लिए थे। हाँ, दिल की आवाज सुन करके और भाई आपके संदेश को सिरोधार्य करके दिल में उतार करके ये गीत सुनवाए गए हैं, इन्हें अपने नाम कर लीजिएगा। और आप कौन है जी? आपने नाम नहीं लिखा लेकिन ढूंढ देंगे हम। वजाहत हाशमी साहब, आपकी पसंद का गीत, आपके नाम रानी स्लो वाली, और आपने भी अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन हम ढूंढ देते हैं भाई, सूंघ लेते हैं, पता लग जाता है कौन है ये इस तरह का मैसेज देने वाले। थैंक यू वेरी मच भरत गंगाराम जी, अमिता जी, सो नाइस ऑफ यू। और आप हैं कौन है आप? अंजलि, अंजलि हर मैसेज के नीचे अपना नाम जरूर लिखा करें प्लीज। आप बच्चे को तंग करते हैं, आप इस तरह से तो बच्चा परेशान हो जाएगा, वो ढूंढता रहता है नाम का, नाम कहाँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। और अर्जन जी, सहर जी, हिना, पम्मी स्लो वाले, महेंद्र पटेल क्रोडन वाले, नीला चौधरी, जगदीश जी बुशी में, हरविंदर जी और भाई फारूक मोहम्मद जी ईस्ट लंदन वाले, आप सब चिंतन के प्रेमी हैं, जैस्मीन भी और सत्यनारायण सैनी सुनते हैं हमें इंडिया में। थैंक यू वेरी वेरी मच। एक संदेश और भी है आपके लिए और वो ये है कि भाई याद दिला दूं आपको, लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द स्टेज म्यूजिकल दिवाली स्टोरी टेकिंग प्लेस एट द ओवर अरीना वेम्बली ऑन संडे द 27th सितंबर। विजिट AXS और वेम्बली फॉर द टिकेट।
3: लाइका रेडियो।
4: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।
1: हुई चढ़ती

0: Listen to the freshest hits added daily on Lyca Radio. Miss your favourite show on Lyca Radio Midlands? You can now listen back at lycaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to lycaradio.com and the Lyca Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the Lyca Radio mobile app. Listen live and listen back to your favourite shows. Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.
1: लौट आइए संगीत की तरफ. आशा भोसले एंड किशोर कुमार बड़े हिट गीत दिए हैं भाई इन दो आवाजों ने. फिल्मी दुनिया में इनका अपना ही मुकाम है.

0: जहाँ तुम ले चलो, ये सब कहने की बातें होती हैं। कहाँ जा रहा है, जहाँ तुम ले चलो, और बीच रास्ते में ही फिर आप गाइडेंस देने में लगते हैं, फिर वो क्या कहते हैं नेविगेशन बन जाते हैं, इधर से कौन जाता है, इधर से गाड़ी फंस जाएगी, उधर चलो ना, आज वहाँ क्या करने जाना है भाई। मतलब अगर आपने ही चलाना है तो फिर गाड़ी आप ही ड्राइव कर लो। ओह उधर कहाँ जा रहे हो, समझते नहीं हो आप इधर से लो गाड़ी, इधर से लो, मैं बता रही हूँ आगे बंद है रास्ता। ओहो बाद में कर दिया होगा, पहले तो खोला था ये रास्ता, ये रास्ते बंद कर देते, कहीं पर काम चल रहा है, कहीं पर भाई कुछ कुछ करके ना सफर लंबा हो जाता है और हम सफर उसे और भी लंबा बना देते हैं।
1: Our sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi ke rates note kar lijiye bhai, 1 pound ke badle they are giving in Indian currency 127.73 rupees, Pakistani 370.05, Sri Lankan rupee 447.75, Bangladeshi take 164.44 aur Afghani 88.36.
4: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. LYCA. This is Leica. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Well, Sona bhai phir upar ki taraf ja raha hai. At this time, the gold is sold at the rate of 98.99 pounds.
3: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278. Like a radio.
0: किसी बहुत खूबसूरत चीज को देखकर आप देखते रह जाते हैं और फिर आंखें मूंद लेते हैं, ये आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। मैंने तो लोगों को देखा, भगवान के सामने भी जाएंगे दर्शन करने, लेकिन हाथ जोड़ के आंखें बंद करके कहीं खो जाएंगे। जानते हैं क्यों? शायद इसलिए कि भगवान की उस छवि को वो अपनी आंखों में उतार करके फिर निकलने नहीं देना चाहते। बंद कर लेते हैं खिड़की को, दरवाजे को, प्रभु दिल में रहें।

0: That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
1: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: और अब मनोरंजन को समेटने का समय हो गया है ना भाइयों, कुछ संदेश आए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्य रंजन दास, भारत से आपने मैसेज भेजा है और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनीता जी, आपका संदेश सर आंखों पर। हेतल सोलंकी जी, सो नाइस ऑफ यू। और बहनों भाइयों, आप सभी का जो खामोशी से सुनते हैं, कभी मैसेज नहीं भेजते, लेकिन सर आंखों पर आपका प्यार और सत्कार। लीजिए, अब अगली मुलाकात तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं, क्योंकि बाली ब्रह्मभट तैयार हैं महफिल सजाने के लिए और आपका दिल बहलाने के लिए। दिल की बात करें तो साहब, चुपचाप अपना दिल निकाल के मेरे हवाले कर दो। अरे संभाल के रखूंगा, पाल के रखूंगा, हेल्दी रहेगा। बाय बाय।

0: मास्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Lester Mella is back.
3: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
2: Lember Hussein Puri. Get ready for full Punjabi energy, Bhangra beats and live Mela vibes.
3: Hosted by the team of Laika Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
2: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
3: Arts Council England.
4: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
5: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
6: Did you know that Laika Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 AM and DAB in London and on the Laika Radio mobile app. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: ये ढोलक को बोलते दत्ताराम ठेका। दत्ताराम का संगीत और प्रदीप, कवि प्रदीप ने लिखा गाना। अब मैं बात कर रहा था रंजीत रजवाड़ा जी से एंड प्रैक्टिस कर रहे थे, पता कौन सा गाना, चांदी जैसा रंग है तेरा, मेरा फेवरेट गीत। एंड ही इज प्रैक्टिसिंग दैट सॉन्ग फॉर एंड ही इज गोना प्रेजेंट इट एट हैरो आर्ट सेंटर। यस, मैं जा रहा हूँ 30 तारीख को एंड टिकट्स आर गोइंग सो फास्ट। कम वन कम ऑल, चांदी जैसा रंग है तेरा।
1: Back to back hits across the Leica Radio Network.
0: Yes, come one, come all. Join me at Harrow Arts Center to listen to none other than Ranjit Rajwada entertaining us to the fullest.

0: There you go, the film Abhiman. अभिमान का ओरिजिनल नाम अलग था कुछ, आपको मालूम था? यू नो ओरिजिनली इट वाज सपोज टू बी कॉल्ड राग रागिनी, इसका नाम होने वाला था, लेकिन इट टर्न इनटू अभिमान. लंबी कहानी है, लेकिन जस्ट टू कट इट शॉर्ट, और ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अभिमान 1973 की सेलिब्रेटिंग टुडे, दैट इज 27th of July 2026, 53 years ago the film was released. And आगे हम थोड़ी बातें करते हैं फिल्म के बारे में.
1: Feel Good Track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: जी हाँ, आइकॉनिक फिल्म, व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म अभिमान. एंड इसमें जो क्लाइमैक्स सीन जब शूट होने वाला था, तब अमिताभ बच्चन और जया भादुरी, हु बिकेम जया बच्चन, वो क्लाइमैक्स सीन के लिए वो हनीमून से लौटे, और एक दिन के बाद, जब लौटने के बाद द नेक्स्ट डे हनीमून से लौटने के बाद इन्होंने क्लाइमैक्स शॉट दिया उस फिल्म का, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर हनीमून. हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट, इज़न्ट इट? अभी इसमें लता मंगेशकर जी वाज एक्सक्लूसिव फॉर जया जी फॉर सिंगिंग ऑल द सॉन्ग्स इन द फिल्म अभिमान, लेकिन अमिताभ बच्चन जी के लिए तीन आवाजें थी, किशोर कुमार की. And then there was who were the other singers? Rafi Saab the, and then Tisre Manhar Bhai. Manhar Bhai ki awaaz was going to be replaced by Mukesh Ji, lekin Mukesh Ji ne kaha inhone itni khubi se gaya hai, and let his voice remain on the track there, you know. So wo gana जो था, लेट मी टेल यू, आई थिंक पिया मिलन, नहीं अब तो नहीं, लुटे कोई मन का नगर, दैट्स राइट. अरे मैं भी यार कभी कभी चकरा जाता हूँ, लुटे कोई मन का नगर, वो मनहर जी ने जो गाया था, दैट वाज सपोज टू बी मुकेश. लेकिन तीन आवाजें थी, और किशोर कुमार जी ने इसमें आई थिंक दो गाने गाकर और फिर वो निकल गए थे इस फिल्म से. अभी बताता हूँ क्यों. अभी बेस्ट एक्ट्रेस इन द मूवी वॉज जया बच्चन, हु गॉट द फिल्म फेयर अवॉर्ड. एंड बेस्ट म्यूजिक ऑफ कोर्स एस डी बर्मन का. एंड सॉन्ग्स लाइक दिस वन, मीत ना मिला रे मन का, तेरे मेरे मिलन की ये रहना, एंड दूसरा दुख के तेरे मेरे मिलन की रहना, तो आई थिंक दो वर्जन उसके अंदर थे, एक डायलॉग्स के साथ था, काइंड ऑफ थिंग. एंड देन अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, पिया बीना, सारे गाने जितने भी मैं बोलता जाऊं, यू वुड नो द ट्यून्स ऑफ. इतनी खूबसूरत फिल्म और इतना खूबसूरत म्यूजिक. नदिया किनारे, दैट वाज अनदर वन. एंड किशोर कुमार जी क्यों वो फिल्म छोड़ के चले गए थे, फिल्म अभिमान, आफ्टर रिकॉर्डिंग ओनली टू सॉन्ग्स, वो कभी लंबी कहानी है, लेकिन कुछ अनबन भी हो गई थी अमिताभ जी के साथ, और उसके बाद वापस सुलह भी हो गया था, ये सब बातें. लेकिन वी आर रिमेम्बरिंग नन अदर देन द फिल्म अभिमान 53 इयर्स अगो.
1: दिस इज लाइक अ रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स.
0: Okay, I got news for you. Yes, it's Raghasan. Leica Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Raghasan. Details at leicaradio.com. And Leica Radio Network is the exclusive radio partner of the stage musical Diwali Story, taking place at the OVO Arena, Wembley on Sunday, 27th September. Visit AXS or Wembley for tickets.
1: This is Leica Radio.
2: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. Leica Gold and Leica Radio Midlands.
1: Leica Radio. holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Okay, Southall Travel is pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208-574-8410. It's all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Leica Extra podcast update.
0: Okay, we got episode number 26 and the title is Reinvention and Entrepreneurship. Entrepreneurship, mentioning a point or two on that one, and it's going to be Deep Raja speaking to Menai Sambre from Samaria Global Finance Limited, an insight into banking sector. Deep and Minal discuss the reality and pressure of those in the financial institutions. Yes, it's reinvention and entrepreneurship. It's podcast episode 26. Leica Extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple, and other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here. Leica Radio. Leica
2: Radio. Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
3: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybon Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybon Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
4: Leicester Miller is back.
5: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
4: Roach Killer. Get ready for big tunes, big vibes, and a massive live performance.
5: Hosted by the team of Leica Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
4: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council,
5: Arts Council England. No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Okay.
4: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
6: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
7: जी टीवी एच डी पर देखिए एक नई कहानी.
8: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
7: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
8: दिल तो टूट पे किया,
7: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
9: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
7: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी. गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे जी टीवी एच डी पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394.
10: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
11: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है.
12: Order online at pujasweets.com. From barfi, laddus, gulab jamun to samosa and gathia. From catering starters to dessert, Pooja Sweets and Savories.
13: Abhi call kijiye 0116-202-1222 or visit Melton Road, LE4-5EA.
12: Pooja Sweets and Savories.
1: Ye hai Leica Gold.

And there is Mrs. Sheikh telling me, आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो चला जिधर चले रास्ता. बोले अभी नहीं जाने दूंगी. हमने बोला नहीं जाने देंगे तो हम नहीं रुक जाते हैं, नेक्स्ट आवर में रुक जाते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल मैसेजेस.

0: जो गाना आपने सुना उसके पीछे एक बड़ा अच्छा नाम भी है, वो नाम मैं बाद में कहूंगा, पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुना दूं। जकारिया खान, जकारिया खान एक पेशावर में जन्मे हुए, मतलब 15 अक्टूबर 1915 में ये जन्मे थे जकारिया खान, और जन्मे थे पेशावर में। पेशावर इज नाउ इन यू कैन से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहा जाता था पुराने जमाने में, अब वो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा उस एरिया का नाम है। वहां पे जन्मे हुए जकारिया खान अ पश्तून हु वाज अ पुलिस ऑफिसर इन अलवर राजस्थान बिफोर स्टार्टिंग फिल्म करियर। एक टॉल, वेरी गुड लुकिंग टॉल मैन विद अ डीप वॉइस। उन्होंने काम किया विजय भट्ट की पहली गुजराती फिल्म संसार लीला 1933 में। विजय भट्ट याद है ना, नो नाम, हु हैड गिवन माह जमीन बानो द नेम मीना कुमारी। He is the one who changed the name of Zakaria Khan and gave him the name Jayant. Ji haan, Jayant. Aapne ye naam to kaafi filmon mein dekha hoga. Especially Himalay ki god mein, Leader, April Fool, Sagai, Do Raste mein Khan bane the. Sangarsh film mein bhi the. Aur Heer Ranja film mein Chaudhary bane the jo. जी हाँ, जयंत, ही प्लेड लीड रोल इन मैनी फिल्म्स। 1930s में तो लीड रोल करते थे जयंत, बॉम्बे मेल, चैलेंज, फिर हिज हाइनेस, स्टेट एक्सप्रेस जैसी फिल्मों में। अब शादी के बाद उनके दो बेटे जो बहुत मशहूर हुए, पहला नाम इम्तियाज खान का लेता हूँ जो छोटा था, मतलब दोनों बेटों में से द यंग सन। ही इज द हस्बैंड ऑफ कृतिका देसाई। अब दूसरा बेटा जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया, वो नाम है अमजद खान। अमजद खान नाम याद है? नाम यही ना याद हो तो मैं याद दिलाता हूं इस ट्रैक से। एक इतना खूबसूरत ट्रैक है जिसके साथ हम इनको याद करते हैं, वो था गब्बर मिक्स। एक बहुत खूबसूरत मेरा ट्रैक बना था विच वॉज नोन एज गब्बर मिक्स, लेकिन मैं इस स्टेशन पे सुना नहीं सकता। उनका लाफ्टर था गब्बर का, गब्बर का लाफ्टर तो इतना फेमस होता था, लेकिन इसमें मैं सुना नहीं सकता। अमजद खान, यस, बोर्न ऑन 12th of November 1940 में जन्मे हुए इन पेशावर, दैट इज नाउ इन खैबर पख्तूनवा। 27th of July 1992 में ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 51। इनके पिताजी के बारे में मैंने बता दिया, अब अमजद खान के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। 132 फिल्म्स इन्होंने काम किया, लेकिन एक फिल्म थी जिसमें बड़े मशहूर हुए थे एज अ डायरेक्टोरियल डेब्यू इन्होंने किया था। जी हाँ, अमजद खान ने एक फिल्म डायरेक्ट भी की थी, वो थी चोर पुलिस 1983 की फिल्म, एंड उसमें शत्रुघ्न सिन्हा वॉज द हीरो एंड परवीन बाबी वॉज द हीरोइन। शक्ति कपूर भी थे, कादर खान भी थे, अमजद खान हिमसेल्फ एक्टेड इन द सेम मूवी दैट ही डायरेक्टेड। ये फिल्म का म्यूजिक आरडी बर्मन ने किया था, तो उसमें कल्पना अय्यर भी थी। हाँ, मुझे बहुत लोग पूछते रहते हैं कि कल्पना अय्यर का और अमजद खान का क्या रिश्ता था। अगर आप पूछेंगे वर दे रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड, आई वुड से यस, कल्पना अय्यर वॉज वाइडली रिपोर्टेड टू हैव बीन इन अ लॉन्ग टर्म क्लोज रिलेशनशिप विद अमजद खान। ड्यूरिंग द 1980s, दो इट वॉज द टॉक ऑफ द इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री में जानकारी थी एंड मीडिया में सब जानते थे. Neither of them publicly confirmed an official romance. इन्होंने डिनाई किया था सब. And Amjad Khan remained married to his wife, Shehla Khan. Now, इन दोनों की कहानी मैं कहूँ तो they worked together on films like the 1980s movie Pyara Dushman. And the gossips column frequently linked them through the 1980s and early 90s. Following Amjad Khan's sudden death in 1992, Kalpana Iyer never got married. And inki dance career bhi khoobsurat thi, Kalpana Iyer ki. Ye film Chor Police jo inhone direct ki thi, usme wo thi. She also acted in this particular film. Which was Chor Police, जिसमें उसका नाम था रूबी. जी हाँ, अब अमजद खान के बारे में मैं कहूँ तो he was active for 41 years from 1951 to 1992 and at the age of 11 he acted in a film called Nazneen. 17 साल की उम्र में अब दिल्ली दूर नहीं, उसमें भी रोल है. अगर ये फिल्में देखोगे नाजनीन और अब दिल्ली दूर नहीं, आप अमजद को देख सकते हैं, अमजद खान को. एंड ही असिस्टेड के आसिफ, मुगले आजम फेम वाले के आसिफ को लव एंड गॉड लेट 60s में. 1973 में हिंदुस्तान की कसम, उसमें स्मॉल रोल. एंड ही डायरेक्टेड चोर पुलिस. जी हाँ, दूसरी फिल्म में अमजद खान की देखा जाए तो इनकार, देश परदेश, नास्तिक, सत्य पे सत्ता, वी ऑल रिमेम्बर हिम इन दोज फिल्म्स, गंगा की सौगंध एंड हम किसी से कम नहीं, नसीब. उसमें अनकन्वेंशनल रोल अगर देखा जाए तो आपने देखी होगी शतरंज के खिलाड़ी, जिसमें संजीव कुमार थे एंड इट वॉज डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे एंड ही वॉज वाजिद अली शाह ऑफ अवध. And he also dubbed a song in that particular film, Shatranj Ke Khiladi. And he was Akbar in Meera. Good roles? Yes! When he did good roles, people loved him. Yarana. Yes, Bhole O Bhole. 1981 ki film. Lavares, 1981. Rocky, 1981. Commander in 1981. Ek art film thi, Utsav. 1984 की, उसमें भी ही वॉज इन अ गुड रोल. एंड देन देयर वर कॉमिकल रोल्स, कुर्बानी, लव स्टोरी, चमेली की शादी. अब इनके अवार्ड्स देखे जाए, ही वन अ फ्यू फिल्म फेयर अवार्ड्स एज अ बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट. जी हाँ, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट के अंदर अगर नाम मैं देखूं फिल्मों के, यू आर गोना से शोले, नहीं शोले में इन ही गॉट नॉमिनेशन. इजंट इट अ शॉकिंग थिंग टू हियर दैट बेस्ट सपोर्ट का रोल उन्होंने अदाकारी की शोले में, इतना मेजर रोल. 1976 में इनको फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेशन ही मिली. फिर कुर्बानी में भी नॉमिनेशन मिली 1981 में, लव स्टोरी फिल्म में भी 1982 की, उसमें भी बेस्ट सपोर्ट. एंड बेस्ट कॉमिक उत्सव में जो उन्होंने रोल निभाया था इतना खूबसूरत, उसमें भी इनको नॉमिनेशन मिला. लेकिन कहाँ जीते थे? ओके, फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड उनको मिला था फिल्म दादा 1982 में, याराना फिल्म में ही गॉट द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का रोल, फिल्म फेयर अवार्ड मिला था. एंड द बेस्ट कॉमिक रोल उनको मिला था माँ कसम 1986 की जो फिल्म थी, उसमें इनको अवार्ड मिला था एज अ बेस्ट कॉमिक. वी आर रिमेम्बरिंग नन अदर देन अमजद खान. अमजद खान ऑन हिज 34th डेथ एनिवर्सरी.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127.45 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI YONO mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: Lister, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, $7.49. Lela Medium Atta 10 kg, just $3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, $24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, $10.99. And Falcon Paneer Box $8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for $3.99. Mido Yogurt 10 kg, $8.99. Karela or Long Dudi $2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE12JU and 2A Rollards Hill, Leicester, LE54UN.
4: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara.
5: Nazar se nazar.
4: Performing live in Birmingham on Friday, 31st July at Albury, Birmingham. Book your tickets now on eventbrite.com. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets just £25, including a three-course meal. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Lester Miller is back.
4: And the stage is about to explode. Confirmed artist,
6: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy, and a proper celebration at the Abbey Park.
4: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
6: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
4: Arts Council England. You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy.
7: Siddhayu, now available at Deepak Foods Thornton Heath.
8: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
9: Location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears. Give or take. See radio differently at radiocentre.org.
12: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
13: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
1: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुगुरुल्ला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु
0: हर हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुगुरुल्ला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह
0: हर हर हर हर
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हर हर हर हर
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हर हर
1: अल्लाह अल्लाह
0: हर हर
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह

0: લોબસ્ટર નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4-5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
3: Punjab, the biggest tunes. No.

0: one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
1: Zee TV HD पर देखिए एक नई कहानी।
2: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
1: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
2: दिल तो टूट पे किया।
1: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
3: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
1: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे जी टीवी HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
4: ये है लाइका गोल्ड।

0: visit starters.co.uk or call
1: 0208-900-2323.
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
3: Leicester Miller is back.
2: And the stage is about to explode. Confirmed artist,
3: Roach Killer. Get ready for big tunes, big vibes and a massive live performance.
2: Hosted by the team of Lyco Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
3: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
2: Arts Council England.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट रागासन.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.

0: Radio right now is where you need to be. So much love coming in. Hema, lots and lots of love going out to you as well. My weekend was fantabulous. I just continued more birthday celebrations. So a lot of love going out to all of you that are dropping messages as well. And yes, we will talk about the poster that's just been posted by Alaika Radio in a few moments. I promise you, we'll talk about it.
1: Energize your evenings with the Radio Wally roller coaster.
2: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara.
3: Nazar se nazar.
2: Performing live in Birmingham on Friday, 31st July at Albury, Birmingham. Book your tickets now on eventbrite.com. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets just £25, including a three-course meal. The exclusive radio partner, Alaika Radio Network.
4: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
5: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time. Legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: हाय, और कहते हैं ना कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती है, बस मिलना मिलाना हम पे छोड़ा है. सो दिस वन्स गोइंग आउट टू ऑल दोस खास खास कपल्स जिसने अपना साथीदार, अपना जोड़ीदार ढूंढ चुके हैं. और मुझे भी बताइए आपने कैसे ढूंढा था, हाउ डिड यू फाइंड योर लव्ड वंस. द मूवी वॉज ऑफ कोर्स रब ने बना दी जोड़ी. वेल डन शैम, फर्स्ट वन इन विद द राइट आंसर.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold is trading at £98.69 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica Radio.
0: 9:26, good evening, you're tuned in at 10 Leica. Lots of love going out, everyone locked in and listening. Such piada messages are coming through. Now this particular track, again, it's your Lazy Land special. So it's something hatke, it's something bachke, it's something that's going to take you out of this world. Now the original track was by the maestro himself, साहब नुसरत फतेह अली खान साहब का. ये ओरिजिनल कंपोजिशन था और ये जो वर्जन मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, आई प्रॉमिस यू आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.
1: टाइम फॉर रेडियो वाली टू टेक यू आउट ऑफ दिस वर्ल्ड with a lazy lounge special.
2: Leica Radio.
0: So if you are feeling a little bit overworked, overwhelmed, Monday's been Mondaying, I promise you, if you turn up the volume, आपकी सारे पूरे दिन की थकान एक चुटकी में भगा दूंगी इस गाने के जरिए.

0: Breaker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं, जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट।
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
3: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02030773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
5: Safo Travel, Atto Protected.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
6: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
0: Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk. The sounds of love across the Midlands. This is Leica Radio.

0: proud hospitality partner, Ragasan. Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
1: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
2: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 Belgrave Road, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
0: ये है लाइका गोल्ड 2.

0: रेडियो।
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साउथहॉल ट्रेवल, एट होम प्रोटेक्टेड।
4: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
5: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.